नाम ले जा रो तने ने दिखा नहीं से प्यारे चौसिया मी यायो सूरा उबरी शिवा ठे।

नाम ले जा रो तने ने तिखा ने से प्याये चौसिया मी तया यो सूरा तुबरी शिवा ठेया।